मत उच्ची मत पत दरख आप वाहि गुरु हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहायता तार जियो। श्री ननकाना साहिब ते होर गुरुद्वारे गुरुधाम जिन्हां तों पंथ नूं भी छोड़िया गया है तिन्हां दे खुले दर्शन ते सेवा संभाल दा दान अपने खालसा पंथ नूं बख्शो। निमाणियां दे मान निताणियां दे ताण ओटियां दी ओट सच्चे पिता वाहिगुरु जी। तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी आप जी ने पार बख्शा मेरा कीतियां सब ते वड समर्थ गुरदेव सब सुख पाई तिसकी सेव। आप जी ने मेरा बख्शा कीतियां शाम दे सोने दीवान सजे सतगुरु जी इलाही बाणी आरती उपरंत अखंड कीर्तन आप जी दे गुणां दा गायन होया सतगुरु जी ओ। वाहिगुरु सिमरन अभ्यास होया सतगुरु जी आपने कृपा मेर दी दृष्टि कीती सेवकां पासों सेवा लई होईयां भुलां गलतियां बख्श लैणियां अगे तो होर श्रद्धा भावना सहित आप जी की सेवा करन दी दात बख्शिश करनी बाणी दा भाव सरबत आईयां संगतां दे हिरदे अंदर वसाउणा सतगुरु जी ओ। सरबत पढ़न सुनन वालियां नूं बाणी नाल प्रेम बख्शिश करना इस तरह संगत नाल प्रेम बख्शना सतगुरु जी ओ। सेवा सिमरन दियां दातां बख्शिश करनियां आप जी दियां बख्शियां दातां विचों संगतां वलों तिल फुल भेटावां आप जी दे चरणां च हाजर होईयां ने। संगतां अपने घरां च बैठियां सतगुरु जी ओ मीडिया दे माध्यम राहीं कीर्तन कथा सरवण करदियां गुरु घर वास्ते सेवावां भेज रहे ने सतगुरु जी ओ। बीबी अंचल दी नानी जी जो पिछले दिन चढ़ाई कर गए सन उन्हां दी मिठी याद विच उन्हां दी आत्मक शांति वास्ते अरदास बेनती करदियां परिवार वलों गुरु घर वास्ते $101 माया हाजिर होई है आप जी प्रवान करो। विछड़ी आत्मा नूं अपने चरणां विच निवास बख्शिश करो परिवार नूं भाणा मिठा करके मनन दी दात बख्शिश करनी आप जी दे दर करदे सेवक बल तेज सिंह नवीं गड्डी दी दात आप जी ने बख्शिश कीती है शुकराने वजों आप जी दे चरणां च अरदासां बेनतियां करदे ने। अपना मेर पिरथ रखदियां होया सुखंडाई करनी सतगुरु जी ओ। गड्डी चलांदियां अपने नाम सिमरन अपनी याद च रखना सतगुरु जी ओ। होर जो जो संगतां आप जी दे चरणां नाल जुड़ियां सतगुरु जी ओ सरबत नूं अपने दरों करो नाम दी दात गुरसिखी जीवन बख्शिश करना इस वक्त आप जी दे दीवान दी संपूर्णता जी की अरदास है जी। पावन पवित्र हुक्मनामे बख्श के निहाल करो।

पाओ। मन तन निर्मल करत क्यारो, हर सिंचय सुधा संजो। या रस मह मगन होत कृपाते, महा विख्याते तो। आयो शरण दीन दुख भंजन, चितवो तो।

वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जैत श्री महला पंजवां। कोई जन हरस्यो देवे जोर, चरण गहो बको शुभ रसना, दीजह प्राण अकोर। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम वाहिगुरु साहिब जी, सतनाम वाहिगुरु साहिब जी, सतनाम वाहिगुरु साहिब जी, सतनाम वाहिगुरु साहिब जी, सतनाम वाहिगुरु साहिब जी, सतनाम वाहिगुरु साहिब जी, सतनाम वाहिगुरु साहिब जी। गौड़ी सुखमनी महला पंजवां। श्लोक एक ओंकार। सतगुरु प्रसाद आदि गुरुए नमः, जुगाद गुरुए नमः, सतगुरुए नमः, श्री गुरुदेवे नमः। अष्टपदी सिमरो सिमर सिमर सुख पावो, कल कलेश तन माहे मिटावो। सिमरो जास विषम पर एक है, नाम जपत अगनत अनेक है। भेद पुराण सिमरत सुधाख्यर, किन्ने राम नाम एक आख्यर। किनका एक जी जी बसावे, ताकि महिमा गनी न आवे। कांकी एक दरस तु हारो, नानक उन संग मोहे उधारो। सुखमनी सुख अमृत प्रभ नाम, भगत जना के मन विश्राम रहाओ। प्रभ के सिमरन गर्भ न बसे, प्रभ के सिमरन दुख जम न सह। प्रभ के सिमरन काल पर हरे, प्रभ के सिमरन दुश्मन टरे। प्रभ सिमरत कछ बिगन न लागे, प्रभ के सिमरन अन दिन जागे। प्रभ के सिमरन पाव न व्यापे, प्रभ के सिमरन दुख न संतापे। प्रभ का सिमरन साध के संग, सर्व निधान नानक हर रंग। प्रभ के सिमरन रिद्ध सिद्ध नाम निध, प्रभ के सिमरन ज्ञान ध्यान तत् बुध। प्रभ के सिमरन जप तप पूजा, प्रभ के सिमरन बिनसे तुजा। प्रभ के सिमरन तीर्थ स्नानी, प्रभ के सिमरन दरगह मानी। प्रभ के सिमरन होए सो भला, प्रभ के सिमरन सुफल फला। से सिमरे जिनाप सिमराए, नानक ताके लागू पाए। प्रभ का सिमरन सब ते ऊंचा, प्रभ के सिमरन उधरे मूचा। प्रभ के सिमरन तृष्णा बुझे, प्रभ के सिमरन सबकी सुझे। प्रभ के सिमरन नाही जम त्रासा, प्रभ के सिमरन पूर्ण आशा। प्रभ के सिमरन मन की मल जाए, अमृत नाम हृदय महि समाए। प्रभ जी बसे साध की रसना, नानक जन का दास दसना। प्रभ को सिमरे से तनवंते, प्रभ को सिमरे से पतवंते। प्रभ को सिमरे से जन प्रवान, प्रभ को सिमरे से पुरख प्रधान। प्रभु को सिमरे से बेमुहताजे, प्रभु को सिमरे से सर्व के राजे। प्रभु को सिमरे से सुखवासी, प्रभु को सिमरे सदा विनाशी। सिमरन ते लागे जिन आप दयाला, नानक जन की मंगेर वाला। प्रभु को सिमरे से परोपकारी, प्रभु को सिमरे तिन सदबलहारी। प्रभु को सिमरे से मुख सुहावे, प्रभु को सिमरे तिन सुख बिहावे। प्रभु को सिमरे तिन आत्म जीता, प्रभु को सिमरे तिन निर्मल रीता। प्रभु को सिमरे तिन आनंद कनेरे, प्रभु को सिमरे बसे हरनेरे। संत कृपा ते अन दिन जाग, नानक सिमरन पूरे भाग। प्रभु के सिमरन कारज पूरे, प्रभु के सिमरन कबू न चूरे। प्रभु के सिमरन हर गुणवानी, प्रभु के सिमरन सह समानी। प्रभु के सिमरन नेचल आसन, प्रभु के सिमरन कमल विगासन। प्रभु के सिमरन अनहद चुनकार, सुख प्रभु सिमरन का अंत न पार। सिमरे से जन जिनको प्रभु माया, नानक तिन जन शरणी पाया। हर सिमरन कर भगत प्रगटाए, हर सिमरन लग वेद उपाय। हर सिमरन पहि सिद्ध जति दाते, हर सिमरन नी चहु कुंड जाते। हर सिमरन तारी सब तरना, सिमर सिमर हर कारण करना। हर सिमरन कियो सगल अकारा, हर सिमरन में आप निरंकारा। कर कृपा जिस आप बुझाया, नानक गुरुमुख हर सिमरन तिन पाया। सलोक दीन दर्द दुख पंजना, कड़गट नाथ अनाथ शरण तुम्हारी आयो। नानक के प्रभु साथ, अष्टपदी जय मात पिता सुत मीत न पाई। मन उहा नाम तेरे संग सहाय, जय महा भयान दूत जम दलै ते केवल।

0: सिपाही अनक नाम जपत है पार पराही अनक बिघन जाय संघारे हर का नाम तत्काल उधारे अनक जोन जन में मर जाम नाम जपत पावे विश्राम हो मैला मल कबू न तो वह हर का नाम कोट पाप खोवे ऐसा नाम जपो मन रंग नानक पाइये साध के संग जय मार के गने जाय न कोसा हर का नाम वहां संग तो सजय पेंडे महान गुब्बारा हर का नाम संग उजियारा जहां पग तेरा कोना सिंजानू हर का नाम दे नाल बचानु जय मां पहान तू तपत बहु काम ते हर के नाम की तुम ऊपर छाम जा तिरखा मन तुझ आकर खे थे नानक हर हर अमृत बरखे भक्त जना की बरतन नाम संत जना के मन विश्राम हर का नाम दास की ओट हर के नाम उधरे जन कोट हर जस करत संत दिन रात हर हर औखद साध कमात हर जन के हर नाम निधान पार ब्रह्म जन की नोदान मन तन रंग रते रंग कै नानक जन के बिरद विवेके हर का नाम जन को मुक्त जुगत हर के नाम जन को तृप्त भुगत हर का नाम जन का रूप रंग हर नाम जपत कपर है ना पंग हर का नाम जन की वड्याई हर के नाम जन शोभा पाई हर का नाम जन को भोग जोग हर नाम जपत कछ नाही वियोग जन राता हर नाम की सेवा नानक पूजे हर हर देवा हर हर जन के माल खजीना हर तन जन को आप्रभ दीना हर हर जन के ओट सतानी हर प्रताप जन अवर न जानी ओत पोत जन हर रस राते सुन समाद नाम रसमाते आठ पहर जन हर हर जपे हर का भगत प्रगट नहीं छपे हर की भगत मुकत भव करे नानक जन संकेते तरे पार जाते हो हर को नाम काम तेन हर हर गुण गाम सबते उत्तम हर की कथा नाम सुनत दर्द दुख लथा नाम की महिमा संत रिद्वस है संत प्रताप दुर्त सब नस है संत का संग वड भागी पाई है संत की सेवा नाम त्याई नाम तुल कछ अवर ना होए नानक गुरुमुख नाम पावे जन कोए सलोक बहु शास्त्र बहु सिमरति पेखे सर्व टंडोल पूजस नाई हर हरे नानक नाम अमोल अष्टवरी जाप ताप ज्ञान सब ध्यान खट शास्त्र सिमरत वख्यान जोग अभ्यास कर्म धर्म क्रिया सगल त्याग बन मधे फिरया अनेक प्रकार की बहु जतना पुण्य दान हो मैं बहु रतना शरीर कटाए हो मैं कर राती व्रत नेम करे बहु पाती नहीं तुल राम नाम विचार नानक गुरुमुख नाम जपिए एक बार नौ खंड पृथ्वी फिर चिर जीव महादास तपी सृथ्वी वह
1: न्यूली कर्म करे बहु आसन जैन मार्ग संजमत साधन निमुख निमुख कर शरीर कटावे तो भी हो मैं मैल ना जावे हर के नाम समसर कछ नाहे नानक गुरमुख नाम जपत गत पाहे मन कामना तीर्थ देह छुटै गर्भ गुमान न मन ते हुटै सोच करै दिनस अर रात मन की मैल न तन ते जात इस देही को बहु साधना करै मन ते कबहु न बिखिया टरै जल धोवै बहु देह अनीत शुद्ध कहाँ होए काची पीत मन हर के नाम की महिमा ऊच नानक नाम उदरे पतित बहमूच बहुत स्याणप जम का भाव व्यापै अनक जतन कर तृष्ण ना धरापै भेख अनेक अगर नहीं बुझै कोट उपाव दरगह नहीं सजै छूटस नाही उप प्याल मोह व्यापह माया जाल अवर करतूत सकली जम डानै गोविंद भजन बेल तिल नहीं मानै हर का नाम जबत दुख जाए नानक बोलै सहज सुभाए चार पदार्थ जे को मांगै साध जना की सेवा लागै जे को अपना दुख मिटावै हर हर नाम हृदय सद गावै जे को अपनी शोभा लोरै साध संग हे हौ मैं शोरै जे को जन्म मरण ते डरै साध जना की सरणी परै जिस जन को प्रभु दर्श प्यासा नानक तांकै बल बल जासा सगल पुरख में पुरख प्रधान साध संग जाका मिटै अभिमान आप सिखाओ जो जाने नीचा सो गनिए सब ते ऊंचा जाका मन हुए सगल की रीना हर हर नाम तिन घट घट चीना मन अपने ते बुरा मिटाना पेखे सगल श्रेष्ठ साजना सुख दुख जन सम दृष्टेता नानक पाप पुन नहीं लेपा निर्धन कौ धन तेरो नाओ निथावै को नाओ तेरा थाओ निमाने को प्रभ तेरो मान सकल कटा को देव दान करण करावन हार स्वामी सकल कटा के अंतर जामी अपनी गत मित जन हो आपे अपन संग आप प्रभ राते तुमरी उस्तत तुम ते होए नानक अवर न जान सकोए सर्व धर्म में

मैं श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप निर्मल कर्म सगल क्रिया मह उत्तम क्रिया साध संग दुर्मत मल हिरिया सगल उदम मह उदम भला हर का नाम जप हो जिय सदा सगल बानी मह अमृत बानी हर को जस सुन रसन बखानी

बलुआ के ग्रह पीतर बसै अनंद केल माया रंग रसै दृढ़ कर मन मन है प्रतीत काल न आवे मूड़े चीत बैर विरोध काम क्रोध मोह झूठ विकार महालोभ त्रोह याहू जुगत बिहाने कई जन्म नानक राख ले हो आपन कर कर्म

अष्टपदी। दस वस्तु ले पाछ पावे, एक वस्त कारण बिखोट गुवावे। एक पी ना दे दस पी हिर ले, तौ मूड़ा कहो कहां करे। जिस ठाकुर से नाही चारा, ता कहो कीजे सद नमस्कारा। जाके मन लागा प्रभ मीठा, सर्व सुख ताहू मन बूठा। जिस जन अपना हुक्म मनाया, ना सर्व थोक नानक तिन पाया। अगनत साहो अपनी दे रास, खात पीत बरत अनद उलास। अपनी अमान कश बाहर साह ले, अज्ञानी मन रोस करे। अपनी प्रतीत आप ही खोवे, बहुर उसका विश्वास न होवे। जिसकी वस्तु तिसे आज्ञा रखे, प्रभु की आज्ञा माने माथे। उसते चौगन करे निहाल, नानक साहिब सदा दयाल। अनिक भांत माया के हेत, सर पर होवत जान अनेत। बिरख की छाया स्यों रंग लावे, ओह बिनसै ओह मन पछतावे। जो दिसै सो चालन हार, लपट रहे तह अंध अंधार। बटाऊ स्यों ज्यो लावे नेह, ता कौ हाथ न आवे केह। मन हर के नाम की प्रीत सुखदाई, कर कृपा नानक आप लय लाई। मिथ्या तन धन कुटुंब सुबाया, मिथ्या होमै ममता माया। मिथ्या राज जोबन धन माल, मिथ्या काम क्रोध विकराल। मिथ्या रत हस्ती असब वस्त्रा, मिथ्या रंग संग माया पेक हस्ता। मिथ्या त्रोह मोह अभिमान, मिथ्या आपस ऊपर करत गुमान। अस्थिर भगत साध की शरण, नानक जप जप जीवै हर के चरण। मिथ्या श्रवण पर निंदा सुनह, मिथ्या हस्त पर दर्प कह रह।

कह दुर्गंध बिन सिमरन दिन रैन बिरथा बिहाए मेघ बिना ज्यो खेती जाए गोविंद भजन बिन बिरथे सब काम ज्यो किरपन केन्द्रार्थ धाम धन धन ते जन जेह घट बस्यो हर नाओ नानक तांकै बल बल जाओ रहत अवर कछ अवर कमावत मन नहीं प्रीत मुखों गंड लावत जानन हार प्रभु परबीन बाहर भेख न काहू पीन अवर उपदेसै आप न करै आवत जावत जन्मै मरै जिसके अंतर बसै निरंकार तिसकी सीख तरै संसार जो तुम भाने तिन प्रभ जाता नानक उनजन चरण पराता करो बेनती पार ब्रह्म सब जाने अपना किया आप है मानै आप है आ

कर प्रसाद गुरुदेव अष्टपदी। जे प्रसाद शति अमृत खाहे तिस ठाकुर कौ रख मन माहे। जे प्रसाद सुगंधत तन लाव है तिसको सिमरत परम गत पाव है। जे प्रसाद बसै सुख मंदर तिसह त्याए सदा मन अंदर। जे प्रसाद ग्रह सांग सुख बसला आठ पहर सिमरो तिस रसना। जे प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा त्याई त्यावन जोग। जे प्रसाद पाठ पटंबर हंडावे है तिसह त्याग कत अवर लुभावे है। जे प्रसाद सुख सेज सोई जय मन आठ पहर ताका जसगा बीजय। जे प्रसाद तुझ सब को माने मुख ताको जस रसन बखाने। जे प्रसाद तेरो रहता धर्म मन सदा त्याए केवल पार ब्रह्म। प्रभ जी जपत दरगह मान पावे है नानक पात सेती घर जावे है।

सगल सिद्धर ढाके मन सरणी पर ठाकुर प्रभ ताकै जे प्रसाद तुझको न पहुँचै मन सास सास सिमरहु प्रभ उचे जे प्रसाद पाई दुर्लभ देह नानक ता की भगत करे जे प्रसाद अपूखन पहरी जय मन तिस सिमरत क्यों आलस की जय जे प्रसाद असवहस्त असवारी मन तिस प्रभ कौ कबहु न बिसारी जे प्रसाद बाग मिलख तना राख परोए प्रभ अपने मना जिन तेरी मन बनत बनाई उठत बैठत सद तिसह तिहाई तिसह तिहाए जो एक अलख है ईहा ऊहा नानक तेरी रखै जे प्रसाद करह पुन बहुदान मन आठ पहर कर तिसका ध्यान

साध कै संग मुख उजल होत, साध संग मल सगली खोत, साध कै संग मिटे अभिमान, साध कै संग प्रगटे सो ज्ञान, साध कै संग बुझे परम नेरा, साध संग सब होत निबेरा, साध कै संग पाए नाम रतन, साध कै संग एक ऊपर जतन, साध की महिमा बरने कौन परानी, नानक साध की शोभा प्रभ माहे समानी, साध कै संग अगोचर मिलै, साध कै संग सदा पर फुलै, साध कै संग आवह बस पंचा, साध संग अमृत रस पुंचा, साध संग हुए सब की रेन, साध कै संग मनोहर बैन, साध कै संग न कतहु तावै, साध संग अस्तित मन पावै, साध कै संग माया ते भिन्न, साध संग नानक प्रभ सो प्रसन्न, साध संग दुश्मन सब मीत, साधु कै संग महापुनीत, साध

साध प्रभु बन आई, साध के संग न कबहू तावै, साध के संग सदा सुख पावै, साध संग बस अगोचर लहै, साधु के संग अजर सहै, साध के संग बसै थान ऊचै, साधु के संग महल पहुँचै, साध के संग दृढ़ सब धर्म, साध के संग केवल पार ब्रह्म, साध के संग पाए नाम निदान, नानक साधु के कुर्बान, साध के संग सब कुल उदार है, साध संग साजन मीत कुटम निस्तार है, साधु के संग सो धन पावे, जिस धन ते सब को वरसावे, साध संग धर्म राय करे सेवा, साध के संग शोभा सुरदेवा, साधु के संग पाप पलायन, साध संग अमृत गुण गायन, साध के संग श्रब थान गम, नानक साध के संग सफल जनम, साध के संग नहीं कछु काल, दर्शन भेटत होत निहाल, साध के संग कलुखत हरै, साध के संग नरक पर हरै, साध के संग इहां उहां सुहेला, साध संग बिशरत हर मेला, जो इच्छा है सोई फल पावे, साध के संग न बिरथा जावे, पार ब्रह्म साध रिद बसै, नानक उदरै साध सुन रसै, साध के संग सुनो हर नाओ, साध संग हर के गुण गाओ, साध के संग न मन ते विसरै, साध संग सर पर निस्तरै, साध के संग लगे प्रभ मीठा, साधु के संग घट घट डीठा, साध संग पै आज्ञाकारी, साध संग गत पई हमारी, साध के संग पै मिटे सब रोग, नानक साध भेटे संजोग।

ब्रह्म ज्ञानी सदांदर लेप जैसे जल में कमल अलेप ब्रह्म ज्ञानी सदांदर दोख जैसे सूर सर्ब का शोक ब्रह्म ज्ञानी कै दृष्ट

ब्रह्म ज्ञानी कै मित्र सुतर समान, ब्रह्म ज्ञानी कै नाही अभिमान। ब्रह्म ज्ञानी ऊंच ते ऊंचा, मन अपने है सब ते नीचा। ब्रह्म ज्ञानी से जन पए, नानक जिन प्रव्याप करे। ब्रह्म ज्ञानी सगल की रीना, आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी चीना। ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर मया, ब्रह्म ज्ञानी ते कछु बुरा न पया। ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी, ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी।

ब्रह्म ज्ञानी कह नाही धंधा, ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंदा, ब्रह्म ज्ञानी कह हुए सुफला, ब्रह्म ज्ञानी सुफल फला, ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उदार, नानक ब्रह्म ज्ञानी जपै सगल संसार। ब्रह्म ज्ञानी कह एक रंग, ब्रह्म ज्ञानी कह बसै प्रभ संग।

आनंद ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास, नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश। ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता, ब्रह्म ज्ञानी एक संग हेता। ब्रह्म ज्ञानी कह हुए अचिंत, ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत। ब्रह्म ज्ञानी जिस करह प्रभ आप, ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप। ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाई है, ब्रह्म ज्ञानी का बल बल जाइए। ब्रह्म ज्ञानी का खोजै महेश्वर, नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। ब्रह्म ज्ञानी की कीमत ना है, ब्रह्म ज्ञानी कह सगल मन माहे। ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद, ब्रह्म ज्ञानी का सदा आदेश। ब्रह्म ज्ञानी का कथिया ना जाए अदाक्षर।

नमस्कार। ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्ट का कर्ता, ब्रह्म ज्ञानी सद जीव नहीं मरता। ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जीव का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता। ब्रह्म

पदी मिथ्या नाही रसना परस मन मह प्रीत निरंजन दर्श पर त्रै रूप न पेख नेत्र साध की टहर संत संग।

मन ते टरै इंद्री जित पंच दोख ते रहत नानक कोट मदे को ऐसा अपरस वैष्णो सो जिस ऊपर सो प्रसन्न बिसन की माया ते होए भिन्न कर्म करत हुए नहीं कर्म तिस वैष्णो का

भगवत कृपाल। आप दृढ़ अवरह नाम जपावे, नानक ओह वैष्णो परम गत पावे। भगवती भगवंत भगत का रंग, सगल त्याग दुष्ट का संग। मन ते बिनसै सगला भरम, कर पूजै सगल पार ब्रह्म। साध संग पापा मल खोवै, तिस भगवती की मत उत्तम होवै। भगवंत की टहल करै नित नीत, मन तन अर्पै बिसन प्रीत। हर के चरण हृदय बसावै, नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावै। सो पंडित जो मन पर बोधै, राम नाम आत्म महसोदै। राम नाम सार रस पीवै, उस पंडित के उपदेश जग जीवै। हर की कथा हृदय बसावै, सो पंडित फिर जोन न आवै। वेद पुराण

जुगत किदै ना पाई है धर्म नानक तिसमिलै जिस लिखिया तुर करम जिसके मन पार ब्रह्म का निवास तिसका नाम सत राम दास आत्म राम तिस नजरी आया दास दसंतन पाए तिन पाया सदा निकट निकट हर जान सो दास दरग है परवान अपने दास को आप कृपा करै तिस दास को सब सोजी परै सगल संग आत्म उदास ऐसी जुगत नानक राम दास प्रभ की आज्ञा आत्महिता वै जीवन मुक्त सोउ कहावै तैसा हरख तैसा उस सोग सदा आनंद तह नहीं वियोग तैसा स्वर्ण तैसी उस माटी तैसा अमृत तैसी बिख खाटी तैसा मान तैसा अभिमान तैसा रंक तैसा राजान जो वरताए साई जुगत नानक ओ पुरख कही है जीवन मुक्त पार ब्रह्म के सगले ठाओ जित जित घर राखै तैसा तन नाओ आपे करण करावन जोग प्रभ पावै सोई फन होग पसरियो आप होए अनंत तरंग लखे न जाहे पार ब्रह्म के रंग

ब्रहस्पती। कई कोट होए पूजारी, कई कोट आचार व्यवहारी, कई कोट पए तीर्थवासी, कई कोट बन ब्रह्म उदासी, कई कोट वेद के स्रोते, कई कोट तपिसर होते, कई कोट आत्म

पाव है। कई कोट भय अभिमानी, कई कोट अंध अज्ञानी, कई कोट कृपन कठोर, कई कोट अभिज्ञ आत्म निकोर, कई कोट पर दर्भ कह रह, कई कोट पर दुख न कर है, कई कोट माया श्रम माहे, कई कोट प्रदेश परमाहे, जित जित लाभ हो तित तित लगना, नानक करते की जाने करता रचना, कई कोट सिद्ध जति जोगी, कई कोट राजे रस भोगी, कई कोट पंखी सर्प उपाए, कई कोट पाथर बिरख निपजाए, कई कोट पवन पानी बैसंतर, कई कोट देश भू मंडल, कई कोट ससियर सूर नखियतर, कई कोट देव दानव इंद्र सिर शतर, सगल समग्री अपने सूत तारै, नानक जिस जिस पावै तिस तिस निस्तारै, कई कोट राजस तामस सातक, कई कोट वेद पुराण सिमृत अर शास्त्र, कई कोट किए रतन समुंद, कई कोट नाना प्रकार जंत, कई कोट किए चिरजीवे, कई कोट गिरी मेर स्वर्ण थीवे, कई कोट जग

कई कोट पाताल के वासी, कई कोट नरक स्वर्ग निवासी, कई कोट जन्म है जीव है मर है, कई कोट बहजोनी फिर है, कई कोट बैठत ही खाहे, कई कोट काल है थक पाहे, कई कोट किए तनवंत, कई कोट माया मह चिंत, जह जह भाणा तह तह राखे, नानक सब किस प्रभ कह हाथे, कई कोट भय वैरागी, राम नाम संग तिन लिव लागी, कई कोट प्रभ कह खोजंते, आत्म मह पार ब्रह्म लहंते, कई कोट दर्शन प्रभ प्यास, तिन को मिल्यो प्रभ अभिनाश, कई कोट मंगे सतसंग, पार ब्रह्म तिन लागा रंग, जिनका होए आप सो प्रसन्न, नानक ते जन सदा धन धन, कई कोट खानी अर

अनेक बढ़ाई, इसका बल नहीं इस हाथ, करन करावन सर्व को नाथ, आज्ञाकारी बपरा जियो, जो तिस पावे सोई फुंथियो, कबहू ऊंच नीच में बसे, कबहू सोग हरक रंग हसे, कबहू निंद चिंद व्यवहार, कबहू ऊब आकाश प्यार, कबू बेता ब्रह्म विचार, नानक आप मिलावन हार, कबू नृत करे बोपात, कबू सोए रहे दिन रात, कबू महाक्रोध विकराल, कबू सर्व की होत रवाल।

नक सच कह, कभू होए पंडित करे बखियान, कभू मौन तारी लावे ध्यान, कभू तट तीर्थ स्नान, कभू सिद्ध साधक मुज्ञान, कभू कीट हस्त पतंग होए जिया, अनक जोन पर मैं परमिया, नाना रूप जो स्वागी दिखावे, जो प्रभावे तिवे नचावे, जो तिस पावे सोई होए, नानक दूजा अवर न कोए, कभू साथ संगत एहु पावे, उस स्थान ते बहुर न आवे।

कै संग जो जल में जल आई खटाना त्यों ज्योति संग जोत समाना मिट गए गबन पाए विश्राम नानक प्रभु।

अष्टपदी जिसके अंतर राज अभिमान सो नरक पाती होवत स्वान जो जाने में जो बनवंत सो होवत बिष्टा का जंत आपस को कर्मवंत कहावे जन्म मरे बो जोन परमावे तन भूम का जो गरे गुमान सो मूर्ख अंधा अज्ञान कर कृपा जिसके हृदय गरीब बसावे नानक यहाँ मुक्त आगे सुख पावे तनवंता हुए कर गरबावे तृण समान कछ संग न जावे बोलस कर मानुक ऊपर करे आस पल पीतर ताका हुए विनाश सबते आप जाने बलवंत किन में हुए जाए पसमंत किसे न बदे आप अहंकारी तरम राय तिस करे कुवारी गुर प्रसाद जका मिटे अभिमान सोजन नानक दरगे परवान कोट कर्म करे हो तारे श्रम पावे सगले बिरतारे अनेक तपस्या करे अहंकार नरक सुर्ग फिर अवतार अनेक जतन कर आत्म नहीं।

जब लग जाने मुझते कछ होए तब इसको सुख ना ही कोई, जब ए जाने मैं किछ करता तब लग गर्व जोन मैं फिरता, जब तारे को बैरी मीत तब लगने चलना ही चीत, जब लग मोह मगन सगमाए तब लग तरम राए दे सजाए, प्रभ कृपा ते बंधन टूटे गुर प्रसाद नानक हो छूटे, सहस खटे लक को उठत्रावे त्रिपत न आवे माया पाचे पावे, अनिक भोग भिख्या के करे न तृप्तावे खप खप मरे, बिना संतोख नहीं को राजे सुपन मनोरथ बिरते सबका जय, नाम रंग सरब सुख होए बड़ भागी किसे प्राप्त होए करन।

दिखे करे विवेक आपे एक आपे अनेक मरे न बिनसे आवे न जाए नानक सधीरे असमाई आप उपदेश समझे आप आपे रचिया सबके साथ आपकी नो आपन विसार सब कुछ उसकाओ करने हार उससे पिन कहो किच होए थान तनंतर एक कैसोए अपने चलत आप करने हार कौतक करे रंगे अपार मन में आप मन अपने माहे नानक कीमत कह न जाए सत सत सत प्रभ स्वामी गुरु प्रसाद की ने वख्यानी सच सच सच सब की ना कोट मदे किने बिरले चीना पला पला पला तेरा रूप अति सुंदर अपार अनूप निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी कट कट सुनी श्रवण बख्यानी पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत नाम जपे नानक मन प्रीत सलोक संत सरन जो जन परे सो जन उदरन हार संत के निंदा नानका बहर बहर अवतार अष्टपदी संत के दुखन आरजा कटे संत के दुखन जमते नहीं छुटे संत के दुखन सुख सब जाए संत के दुखन नरक में पाए संत के दुखन मत होए मलीन संत के दुखन सो बाते हीन संत के हते को रखे न कोई संत के दुखन थान प्रस्त होए संत कृपाल कृपा जे करे नानक संत संग निंदक पी तरे संत के दुखन ते मुख पवे संतन के दुखन काग जो लवे संत के दुखन सरब जोन पाए संत के दुखन त्रिगत जोन किरमाए संतन के दुखन तृष्णा में जले संत के दुखन सब को चले संत के दुखन तेज सब जाए संत के दुखन नीच निचाए संत दुखी का थाओ को नाही नानक संत पावे ता ओ पी गत पाए संत का दुख संत का निंदक मा अताई संत का निंदक टिकन ना पाई संत का निंदक मा हत्यारा संत का निंदक परमेश्वर मारा संत का निंदक राज तेहीन संत का निंदक दुखिया यर दीन संत के निंदक को सरब रोग संत के निंदक को सदा बिजोग संत की निंदा दोख में दोख नानक संत पावे ता उसका भी होए मोख संत का दुखी सदा अपवित संत का दुखी किसे का नहीं मित संत के दुखी को डान लागे संत के दुखी को सब त्यागे संत का दुखी महाअंकारी संत का दुखी सदा बेकारी संत का दुखी जन में मरे संत की दुख ना सुखते टरे संत के दुखी को ना ही ठाओ नानक संत पावे ता लय मिलाए संत का दुखी अद बीज ते टूटे संत का दुखी ते काज ना पहुंचे संत के दुखी को ध्यान परमाइए संत का दुखी उजड़ पाइए संत का दुखी अंतर ते तो था जो सांस बिना मृतक की लो था संत के दुखी की जड़ किशना है आपन बीजा पे ही खाहे संत के दुखी को अवर न राखन हार नानक संत पावे तले उबार संत का दुखी यो बिल्लाए जो जल बिहून मछली तड़फड़ाए संत का दुखी भूखा नहीं राजे जो पावक ईधन नहीं त्रापे संत का दुखी छुटे अकेला जो बुआर तिन खेत माहे दुहेला संत का दुखी तरम ते रहत संत का दुखी सद मिथ्या कहत किरत निंदक का तुर ही पया नानक ज्योतिष पावे सोई थिया संत का दुखी बिगड़ रूप हो जाए संत के दुखी को दरगह मिले सजाए संत का दुखी सदा सहकाइए संत का दुखी ना मरे ना जीवाइए संत के दुखी की पूजा न आसा संत का दुखी उठ चले निराशा संत के दुख न तिष्ठे कोए जैसा पावे तैसा कोई होए पया कीर्त न मिटे कोए नानक जाने सच्चा सोए सब कर तिसक्यो करने हार सदा सदा तिसको नमस्कार प्रभ की उस्तत करो दिन रात तिसे त्याबो सास गिरा सब कुछ वर्त है तिसका किया जैसा करे तैसा को थिया अपना खेल आप करने हार दूसर कौन करे विचार

एकासर मन रखो नानक दुख परम पो जाए अष्टपदी। मानुक की तेग वृद्धि सब जान देवन को एक है भगवान जिसके दिए रहे अगाए बोर न तृष्णा लगे आए। मारे रखे को आप मानुक कह कृष्णा ही हाथ तिसका हुक्म बूझ सुखोए तिसका नाम रख कंठ परोए। सिमर सिमर सिमर प्रभ सोए नानक बिघन न लागे कोए उस्तत मन।

एक ठाकुर का रंग साथ संग बिन सह सब संग चरण चलो मार्ग गोबिंद मिटे पाप जपिए हर बिन कर हर कर्म श्रवण हर कथा हर दरगे नानक उजल मथा बड़ भागी ते जन जग माहे सदा सदा हर के गुण गाहे राम नाम जो करे विचार से तनवंत गनी संसार मन तन मुख बोले हर मुखी सदा सदा जानो ते सुखी एको एक एक पचाने इत उत्की ओ सो जी जाने नाम संग जिनका जिसका मन मान्या नानक तिने निरंजन जान्या गुर प्रसाद आपन आप सुजय तिसकी जानो तृष्णा बुझे साध संग हर हर जस कहत सर्व रोग त्यो हर जन रहत अंदिन कीर्तन केवल बख्यान ग्रस्त मैं सोई निर्वाण एक ऊपर जिस जन की आसा तिसकी कटिया जम की फासा पार ब्रह्म की जिस मन भूख नानक तिसे न लागे दुख जिसको हर प्रद मन चित आवे सो संत सुहेला नहीं डुलावे जिस प्रभ अपना कृपा करे सो सेवक को किसते डरे जैसा सा तैसा दृष्टाया अपने कारज में आप समाया सोदत सोदत सोदत सीजिया गुर प्रसाद तत सब बुझिया जब देखो तब सब किश मूल नानक सोई सुखम सोई असूर न के जन्मे न किश मरे अपन चलत आप ही करे आवन जावन दृष्ट अंदृष्ट आज्ञाकारी तारी सब श्रेष्ठ आपे आप सगल में आप अनेक जुगत रच थाप उथाप अभिनाशी नाही किछ खंड तारण तार रहो ब्रह्मंड।

मंत्र प्रभु के सेवक सगल उदाहरण प्रभु के सेवक दुख विसारण आपे मेलय कृपाल गुरु का शब्द जपे निहाल उनकी सेवा सोई लागे जिसनो कृपा करे बड़ पागे नाम जपत पावे विश्राम नानक तिन पुरख को उत्तम कर मान जो किश करे सो प्रभ कै रंग सदा सदा बसे हर संग सहज सुभाय हो वैसो होए करणे हार पछाणे सोए प्रभ का किया जन मीठ लगाना जैसा सा तैसा दिष्टाना जिसते उपजत समाहि समाई ओए सुख निधान उन्हों बने आए आपस को आप दीनो मान नानक प्रभ जन एको जान श्लोक सर्व

सबल की चिंता जिस मन माहे तिस्ते बिरथा कोई नाहे। रे मन मेरे सदा हर जाप अपना सी प्रभा पे आप। आपन किया कछु न होए जेसो प्राणी लोचे कोई। तिस बिन नाही ते रह किश काम कत नानक जप एक हर नाम। रूपवंत होए नाही मोह है प्रभ की जोत सगल कट सो है। तनवंता होए क्या को गर्भ है जा सब किस तिस का दिया दर्भ है। अत्सुरा जे को कहावे प्रभ की कला बिना कहतावे। जे को हुए बह दाता तिस दिन हार जाने गावार। जिस गुर प्रसाद टूटे हो रोग नानक सोजन सदाया रोग। जो मंदर को थामे तमन त्यो गुर का शब्द मने अस्तमन। जो पाखाण नाव चढ़तर प्राणी गुर चरण लगत निस्तर। जो अंधकार दीपक प्रगास गुर दर्शन देख मन हुए बिगास। जो माँ उद्यान में मार्ग पावे त्यो साधु संग मिल जोत प्रगटावे। तिन संतन की बाछो तूर नानक की हर लोचा पूर। मन मूरख काहे बिल्लाई है पुरब लिखे का लिखिया पाई है। दुख सुख प्रभ देवन हार अवर त्याग तू तिसे चितार। जो कश करे सोई सुखमान पूला काहे फिरे अजान। कौन बस से आए तेरे संग लपटरे और असलो भी पतंग। राम नाम जप हृदय माहे नानक पद से ती कर जाहे। जिस वक्र को लैन तू आया राम नाम संतन कर पाया। तजिब मान लेहो मन मोल राम नाम हृदय में तोल। लात खेब संत संग चाल अवर त्याग बिकिया जंजाल। तन तन कह सब कोए मुख उजल हर दर गै सोए। ए वापार बिरला वापार है नानक ता कह सद बलहार है। चरण साध के तोय तोय पियो सर्प अरब साध को अप...

गाई है। अनेक बिगंते साधु राखे हर गुण गाय अमृत रस चाखे ओट गही संत दरियाया सर्व सुख नानक ते पाया मृतक को जीवाल नहार भूखे को देवत आधार सर्व निधान जाके दृष्टि माहे पुरब लिखे का लहना पाहे सब कष तिसकाओ करने जोग तिस बिंदु सर हुआ न हो जब जन सदा सदा दिन रैणी सब ते उच निर्मल ए करनी कर कृपा जिसको नाम दिया नानक सो जन निर्मल थिया जाके मन गुर की प्रति तिस जन आवे हर प्रभचित भगत भगत सुनिए ते लोए जाके हृदय एको होए सच करनी सचता की रहत सच हृदय सत मुख कहत साची दे सचाया कार सच वरतै सच

तिसे बुझाई नानका जिस होवै सुपरसन अष्टपदी। अविनाशी प्रभ मन में राख मानु की तू प्रीत त्याग तिस्ते परे नाही किच कोए सर्व निरंतर एको सोए आपे बिना आपे दाना गहर गंभीर गही सुजाना पार ब्रह्म परमेश्वर गोबिंद कृपा निदान दयाल बख्शन साथ तेरी की चरणी पाओ नानक कै मन ए अनराव मनसा पूरन सरना जोग जो कर पाया सोई होग हरन परन जा कर नेत्र फोर तिसका मंत्र न जाने होर अनद रूप मंगल सद जाके सर्व थोक सुनिए करता के राज में राज जोग में जोगी तप में तपिसर गृहस्थ में भोगी त्याय त्याय भगत सुख पाया नानक।

चरण सत सत प्रसनहार, पूजा सत सत सेवदार, दर्शन सत सत पीकनहार, नाम सत सत त्यावनहार, आप सत सत सवतारी, आपे गुणकारी, सबद सत सत प्रभक्ता, सुरत सत सत जसुंता, भोजनहार को सत सब होए, नानक सत सत प्रभ सोए, सत स्वरूप हृदय जिन मान्या, करन करावन तिन मूल पछान्या, जाकर हृदय विश्वास प्रभाया, तत् ज्ञान स्मरण प्रगटाया, पहते निरपो होए बसाना, जिस ते उपजत समाय समाना, बस महले बस गडाई, ताको पिन न कहना जाई, बुझे भोजन हार विवेक, नारायण मिले नानक एक, ठाकुर का सेवक आज्ञाकारी, ठाकुर का सेवक सदा पुजारी, ठाकुर के सेवक के मन प्रतीत, ठाकुर के सेवक के निर्मल रीत, ठाकुर को सेवक जाने संग, प्रभु का सेवक नाम के रंग, सेवक को प्रभु पालन हारा, सेवक की राखे निरंकारा, सो सेवक जिस दया प्रभु धारे, नानक सो सेवक सास सास समारे, अपने जन का पर्दा टाके, अपने सेवक की सर पर रखे, अपने दास को देवड़ाई, अपने सेवक को नाम जपाई, अपने सेवक की आपत रखे, ताकि गतमित कोई न लाके, प्रभु के सेवक को कौन पहुंचे, प्रभु के सेवक ऊंचे ऊंचे, जो प्रभु अपनी सेवा लाया, नानक सो सेवक दैदृश प्रगटाया, नीकी कीरी मैं कर रखे, पसम करे लस्कर कोट लाके, जिसका सास न काट आप, ताको राकत देकर हाथ, मान जतन करत मोपात, तिसके कर्तव्य बिरथे जात, मारे न राखे अवर न कोय, सर्व जिया का राखा सोए, काहे सोच करे रे प्राणी, जप नानक प्रभ अलग विडाणी, बारंग बार बार प्रभ जपिय, पी अमृत ए मन तंत्र पिय, नाम रतन जिन गुरमुख पाया, तिस किछ अवर न ही दिष्टाया, नाम तन नामो रूप रंग, नामो सुख हर नाम का संग, नाम रस जो जन तृप्ताने, मंतन नामे नाम समाने, उठत बैठत सोवत नाम, कौन नानक जन कह सदकाम, बोलो जस जी बा दिन रात, प्रभ अपने जन की निदात, करे भगत आत्म कह चाय, प्रभ अपने सुर है समाय, जो होवा होवत सो जाने, प्रभ अपने का हुक्म पछाने, तिसकी महिमा कौन बखानो, तिसका गुण कै एक न जानो, आठ प्रहर प्रभ से हजूरे, कहो नानक से ही जन पूरे, मन मेरे तिन की ओट लेह, मंतन अपना तिन जन देह, जिन जन अपना प्रभु पचाता, सो जन सरब तो का दाता, तिसकी शरण सरब सुख पावे, तिसके दरस सब पाप मिटावे, अवर से आनब सगली छाड, तिस जन की तो सेवा लाग, आवन जान ना हो भी तेरा, नानक तिस जन के पूजो सद पैरा, सलोक सत पुरख जिन जाने आ, सत गुर तिसका नाओ, तिसके संग से कुदरे, नानक हर गुण गाओ, अष्टपदी सदगुर सिक्की करे प्रतपाल, सेवक को गुर सदा दयाल, सिक्की गुर दुर्मत मल हिरे, गुर बचनी हर नाम उचरे, सदगुर सिक्के बंधन काटे, गुर का सिख बिकार ते हटे, सदगुर सिख को नाम तन दे, गुर का सिख वड भागी है, सदगुर सिख का हलत पलत सवारे, नानक सतगुर सिख को जिय नाल समारे, गुर के ग्रह सेवक जो रहे, गुर की आज्ञा मन में सहे, आपस को कर कृष्णा जनावे, हर हर नाम हृदय सत्यावे, मन बीचे सतगुर के पास, ते सेवक के कार्य राग, सेवा करत हुए नहीं कामी, तिसको होत परापत स्वामी।

की कीमत किन्हें न पाई, अनेक भगत बंधन नित करे, चरण कमल हृदय सिमरे, सदबलहारी सदगुरे अपने, नानक जिस प्रसाद ऐसा प्रभ जपने, ए हर रस पावे जन कोई, अमृत पीवे अमर सो होय, उस पुरख का नाही कदे विनाश, जाके मन प्रगटे गुणदास, आठ पहर हर का नाम ने, सच दे सेवक को दे, मोह माया के संग न ले, मन में रखे हर हर एक, अंधकार दीपक परगा से, नानक परम मोह दुख तय तेना से, तपत माहे ठांड वरताई, अनत पया दुख नाठे पाई, जन्म मरण के मिटे अंदेसे, साधु के पूरन उपदेसे।

तित पाई चुके प्रभगवन सुन नानक हर हर जसरवन निर्गुण आप सरगुण भी ओही कलातार जिन सगली मोहि अपने चरित प्रभ आप बनाए अपनी कीमत आपे पाए हर बिंदु जाना ही कोए सर्व निरंतर को सोए ओत पोत रव्या रूप रंग पै प्रगात सात के संग रच रचनाय अपनी कल तारी अनेक बार नानक बलहारी सलोक साथ न चाले बिन भजन बिख्या सगले चार हर हर नाम कमावना नानक एव तन सार अष्टपदी संत जना मिल करो विचार एक सिमर नाम आधार अवर पाप सब मीट बिसारो चरण कमल रिद में उतारो करण कारण सो प्रभ समरथ दृढ़ कर गहो नाम हरवत एतन संचो हो वो भगवंत संत जना का निर्मल मंत एक आसरा को मन माहे सर्व रोग नानक मिट जाहे जिस तन को चार कुंट उठतावे सो तन हर सेवा ते पावे जिस सुख को नित बाचे मीत सो सुख साधु संग परीत जिस सोभा को करे पली करनी सासो पापज हर की सरनी अनेक उपावी रोग न जाए रोग मिटे हर अवखद लाए सर्व निधान में हर नाम निधान जब नानक दर गए परवान मन पर बोधो हर के नाए दर्द स्थावत आवैठाए ताको बिगन न लागे कोई जाके हृदय बसे हर सोए कलता दी ठाडा हर नाओ सिमर सिमर सदा सुख पाओ पौबिन से पूरन होए आस भगत पाए आत्म प्रगास तित कर जाए बसे अविनाशी कहो नानक काटी जम फांसी तत विचार कहे जन साचा जन्म मरे सो काचो काचा आवागवन मिटे प्रभ से आप त्याग शरण गुरुदेव रतन जन्म का हुई उदार हर हर सिमर प्राण आधार अनेक उपाव न छूटन हारे अनेक उपाव न छूटन हारे सिमरत शास्त्र भेद बिचारे हर की भगत करो मन लाए मन बंचत नानक फल पाए संग न चालस तेरे तना तू क्या लपटा वे मूर्ख मना सुत मीत कुटुंब अरबंता इनते कहूं तुम कवन सना था राज रंग माया विस्तार इनते कहूं कवन छुटकार असस्थी रथ सवारी चूठा डंप चूट पासारी जिंदिए तिस बुझे ना बिगाना नान बिसार नानक पछताना गुर की मत तू लेह याने भगत बिना बो डूबे स्याने हर की भगत करो मन मीत निर्मल होए तुम्हारो चीत चरण कमल राखो मन माहे जन्म जन्म के किल बिख जाहे आप जपो अवरा नाम जपावो सुनत कहत रहत गत पावो सार पूत सथर को नाव सहत सुबाय नानक गुन गाव गुन गावत ते उतरस मैल बिनस जाए हो मैं बिख फैल हुए अचिंत बस है सुख नाल सास गरा सर नाम समाल छाड़ से अनप सगली मना साध संग पावे सच तना हर पूंजी संच करो बिहार इहा सुख दर गह जयकार सर्व निरंतर एक को देख कहो नानक जाके मस्तक लेख एक को जप एक को साला है एक सिमर एक को मना है एकस के गुन गाओ अनंत मंतन जाप एक भगवंत एक को एक एक हरियाप पूरन पूर रहे हो प्रव्याप अनेक विस्तार एक ते पै एक अराध पर

साधना की मांग तूर पार ब्रह्मेर सरदापुर सदा सदा प्रभ के गुण गावो सास सास प्रभ तुम्हें ते आवो चरण कमल से लागे प्रीत भगत करो प्रभ की नित नित एको टेको आधार नानक मांगे नाम प्रभ सार प्रभ के दृष्ट महासुख होए हर रस पावे बिरला कोई जिन चाख्या से जन तृप्ताने पूरन पुरुख नहीं डोलाने सुपर परे प्रेम रस रंग उपजे चाओ साध के संग परे सरन आन सब त्याग अंतर प्रगासन दिन लिवलाग बट भागी जप्या प्रभ सोए नानक नाम रते सुख होए सेवक की मनसा पूरी पई सदगुर ते निर्मल मत लई जन को प्रभ होयो दयाल सेवक की नो सदा निहाल बंधन काट मुकत जन भया जन्म मरण दुख प्रम गया इच पुनी सरदा सब पूरी रब रहे सत्संग हजूरी जिसका साथी लिया मिलाए नानक भक्ति नाम समाये सो क्यों बिसरे जे काल न पाने सो क्यों बिसरे जे किया जाने सो क्यों बिसरे जिन सब किश दिया सो क्यों बिसरे जे जीवन जिया सो क्यों बिसरे जय अगन में राखे गुर प्रसाद को बिरला लाखे सो क्यों बिसरे जय बिखते काडे जन्म जन्म का टूटा गाडे गुरपुरै तत एह बुझाया प्रभ अपना नानंजन त्याया साजन संत करो एह काम आम आन त्याग जपो हर नाम सिमर सिमर सिमर सुख पावो आप जपो अवरह नाम जपावो भगत पाए तर यह संसार पिन भक्ति तन हो सी चार सर्व कल्याण सुख निद नाम बूढ़त जात पाए विश्राम सगल दुख का होवत नाश नानक नाम जपो गुणतास उपजी प्रीत प्रेम रस चाओ मंतन अंतर एही सुवाओ नेत्रोपेक दरस सुखोय मन बिकसे साथ चरण तोय भगत जना के मंतन रंग बिरला को पावे संग एक बस दीजे करमया गुर प्रसाद नाम जप लया ताकि उपमा कही न जाए नानक रहया सर्व समाय प्रभक संद दीन दयाल भगत वचल सदा कृपाल अनाथ नाथ गोविंद गोपाल सर्व कटा करत प्रतपार आदि पुरख कारण करतार भगत जना के प्राण आधार जो जो जपे सो होए पुनीत भगत पाए लावे मन हित हम निर्गुण आर नीच अजान नानक तुमरी शरण पुरख भगवान सर्व बैकुंठ मुक्त मोक पाए एक निमक हर के गुण गाय अनक राज भोग बढ़ियाई हर के नाम की कथा मन पाई वो भोजन का प्रसंगीत रसना जपती हर हर नीत पली सुकरनी सोभा तन

पाप उन तब कहते होता जब तारी अपन सुन समात, तब बैर विरोध के संकमात, जब इसका भरण चिन्ह न जापत, तब हरक शोक को किसे व्यापत, जब आपन आप पार ब्रह्म तमो कहाँ किस होवत परम, आपन खेल आप वर्ती जा, नानक करने हार न दूजा, जब होवत प्रभ केवल तनी, तब बंद मुकत को किसको गनी, जब एक कहर अगम अपार, तब नरक सुरक को कौन अवतार, जब निर्गुण प्रभ से सुभाई, तब तिप सकत कहो कि थाई, जब आपे आप अपनी जोत तरे, तब कवन डर कवन कत डरे, आपन चरताप करने हार, नानक ठाकुर अगम अपार, अविनाशी सुख अपनासन, जन्म मरण को कहा विनाशन, जब पूरन करता प्रभ सोय, तब जम की त्रास कहो किस होय, जब अवगत गोचर प्रभ एका, तब चित्रगुप्त किस पूछत लेखा, जब नाद निरंजन गोचर गा दे, तब कौन छुटे कौन बंधन बाधे, आपन आप यच रजा, नानक आपन रूप आप युप रजा, जय निर्मल पुरख पुरख पत होता, तय बिन मैल कहूँ क्या तोता, जय निरंजन निरंकार निर्वाण, ते कौन को मान कौन अभिमान, जय स्वरूप केवल जगदीश, ते छल छिद्र लगत को की, जय ज्योत स्वरूपी ज्योत संग समावे, ते किसे भूख कवन तृप्तावे, करन करावन करने हार, नानक करते का नहीं सुमार, जब अपनी शोभा आपन संग बनाई, तब कमन माए बाप मित्र सुत पाई, जय सर्व कला आपे पर बीन, ते वेद कवते कहाँ को चीन, जब आपन आप उतारे, तो सगन अपसगन कहाँ बिचारे, जय आपन ऊच आपने आप निरत, कौन ठाकुर कौन कहिए चेरा, बिस्मन बिस्म रहे बिस्माद, नानक अपनी गत जानो आप, जय अचल अछेद अपेद समाया, उहां किसे बे आपत माया, आपस को आपे आदेश, तय गुण का नाही परवेश, जय एक एक एक भगवंता, तय कौन अचिंत किस लागे चिंता, जय अपन आप पतियारा, तय कौन कथे कौन सुनने हारा, वो बेअंत ऊंचते ऊंचा, नानक आपस को आपे पहुंचा, जय आप रचियो पर पंच अकार, तय गुण में कीनो विस्तार, पापुन तय पही कहावत को, नरक को सुरक बन चावत।

आपन खेल आप कर देखे खेल संकोचे तो नानक एक है। जब भगत भगत दया आप जय पसरे पासार संत प्रताप धूपा काया पे तनी उनकी शोभा उन्हों बनी आपे कौतक करे नद चोज आपे रस भोग निर्जोग जिस भावे तिस अपना नाय लावे जिस भावे तिस

0: अरिष्टपदी आप कथे आप सुनने हार अपेक आविस्तार जातिस पावित असिष्ट उपाय अपने पाणे ले समय तुम ते पिन नहीं किच होए आपन सूत सब जगत पर होए जाको प्रभु जो आप बुझाए सच नाम सोई जन पाए सो समदर्शी तत् का बेता नानक सगल श्रेष्ठ का जेता जी जन सब के हाथ दीन दयाल नाथ को नाथ जिस राखे तिस कोई न मारे सो मुआ जिस मन बिसारे तिस तज अवर कहाँ को जाए सब सिर एक निरंजन राय जी की जुगत जा कैसा बहात अंतर बाहर जानो साथ गुण निधान बेअंत अपार नानक दास सदा बलहार पूरन पूर है दयाल सब ऊपर होवत कृपाल अपने कर्तव्य जाने आप अंतर जामी रहे ब्याप प्रतपाले जीवन बो पात जो जो रचे सो तिसे त्याग जिस पावे तिस लय मिलाए भगत करे हर के गुण गाए मन अंतर विश्वास कर मानिया करनहार नानक एक जानिया जिन लागाहर एक कहनाए तिसकी आस न बिरती जाए सेवक को सेवा बने आई हुकम बूझ परम पद पाई इसते ऊपर नहीं विचार जाके मन बसिया निरंकार बंधन तोर पे निर्वैर अंदिन पूजे गुर के पैर ए लोक सुखिए पर लोक सुहेले नानक हर प्रभ आपे मेले साथ संग मिल करो आनंद गुण गावो प्रभ परमानंद राम नाम तत् करो विचार दुर्लभ देगा करो उधार अमृत वचन हर के गुण गाओ प्राण तरन का ए सुहाओ आठ पहर प्रपेको नेरा मिटे ज्ञान बिन से अंधेरा सुन उपदेश हृदय बसावो मन निचे नानक पल पाओ हलत पलत दे ले उसवार राम नाम अंतर उतार पूरे गुर की पूरी दिख्या जिस मन बसते साज परिख्या मंत्र नाम जपो ले बुलाए
1: दर्द मन ते पाओ जाए सचवा पार करो व्यापारी दरगह निभे की तुम्हारी एका टेक रखो मन माहे नानक बहुर न आवह जाहे तिस्ते दूर कहां को जाए उबरे रखन हारते आए निरपाओ जपै सगल पाओ मिटै प्रभ कृपा ते प्राणी छुटै जिस प्रभ राखे तिस नाही दुख नाम जपत मन होवत सुख चिंता जाए मिटै अहंकार तिस जन का कोई न पहुंचन हार सिर ऊपर ठंडा गुरसूरा नानक ताके कार्ज पूरा मत पूरी अमृत जाके दृष्ट दर्शन पेखत उदरत श्रेष्ठ चरण कमल जाके अनूप सफल दर्शन सुंदर हर रूप धन सेवा सेवक प्रवान अंतर जामी पुरख प्रधान जिस मन बस

अष्टपदी संत संग अंतर प्रभ डीठा नाम प्रभु का लागा मीठा सगल समिग्री एकस घट माहे अनक रंग नाना दृष्टा है नौ

प्रहया भगवंत तरण माहे आकाश पयाल सर्वलोक पूर्ण प्रतपाल बन दिन पर्वत है पार ब्रह्म जैसी आज्ञा तैसा कर्म।

ओत पोत। गुर प्रसाद भरम का नास, नानक तिन मह एहो विश्वास। संत जना का पेखन सब ब्रह्म, संत जना कै हृदय सब धर्म। संत जना सुनै शुभ बचन, सर्व व्यापी राम राम संग रचन।

उत्पत तिस भावैता करे विस्थार, तिस भावैता एकंकार। अनिक कला लखी नह जाए, जिस भावै तिस लय मिलाए। कवन निकट कवन कहिए दूर, आपे आप आप भरपूर। अंतरगत जिस आप जनाए, नानक तिस जन आप बुझाए। सर्वभूत आप वरतारा, सर्व नैन आप पे कन्हारा। सगल समग्री जाका तना, आपन जस आप ही सुना। आवन जान एक खेल बनाया, आज्ञाकारी की नी माया। सबके मद

तीर्थ नावा जे तिस पावा विण भाणे के नाए करी जेते सिरठ उपाई वेखा विण कर्मा के मिलै लई मत विच रतन जवाहर माणक जे एक गुर की सिख सुनी गुरा एक देह बुझाई सबना जिया का एक दाता सो मैं विसर ना जाई जे जुग चारे आर जा होरद सोनी होए नवा खंडा विच जानी है नाल चले सब कोए चंगा नाव रखाए कै जस कीरत जग ले जे तिस नदर न आवई ता वात न पुछे के कीटा अंदर कीट कर दोषी दोष तरे नानक निर्गुण गुण करे गुणवंतिया गुण दे तेहा कोई न सुजई जे तिस गुण कोई करे।

नानक भगता सदा विगास सुनया दुख पाप का नास सुनया सत संतोख ज्ञान सुनया अठ सठ का इशनान सुनया पढ़ पढ़ पावह मान सुनया लागे सहज ध्यान नानक भगता सदा विगास सुनया दुख पाप का नास सुनया सरा गुणा के गाह सुनया सिख पीर पातशाह सुनया अंधे पावह राहो सुनया हाथ होवै सगाहो नानक भगता सदा विगास सुनया दुख पाप का नास मन्ने की गत कही ना जाए जे को कह पिछे पछताए कागज कलम न लिखन हार मन्ने का बह करन विचार ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए मन्ने सुरत होवे मन बुद्ध मन्ने सगल पवन की सुध मन्ने मोहे चोटा न खाए मन्ने जम कै साथ न जाए ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए मन्ने मार्ग ठाक न पाए मन्ने पात सिंह प्रगट जाए मन्ने मग न चले पंथ मन्ने धर्म सेती सरबंध ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए मन्ने पावह मोख द्वार मन्ने परवार साधार मन्ने तरह तारे गुरसिख मन्ने नानक पवह न भिख ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए पंच प्रवान।

तीर्थ तप दया दत दान जे को पावे तिलका मान सुनिया मनिया मन कीता भाओ अंतरगत तीर्थ मल नहाओ सब गुण तेरे मैं नाही कोए विण गुण कीते भगत न होए स्वस्थ आत्म बाणी बरमाओ सत सुहाण सदा मन चाओ कवण सो वेला वक्त कवण कवण थित कवण वार कवण सरुति माहु कवण जित होआ आकार वेल न पाइया पंडती जे होवै लेख पुराण वक्त न पायो का दिया जे लिखन लेख कुरान थित वार ना जोगी जाने रुत माहो ना कोई जा करता सिर ठीका सा जे आपे जाने सोई क्यों कर आखा क्यों सालाही क्यों वरनी क्यों जाना नानक आखण सब को आख एक दू एक सियाणा वड्डा साहिब वड्डी नाई कीता जाका होवै नानक जेको आपाओ जाने अगै गया ना सो है पातालां पाताल लख आगासा आगास ओड़क ओड़क भाल थके वेद कहन एक वात सहस ठारह कहन कतेबा असलू एक धात लेखा होए ता लिखिए लेखे होए विनाश नानक वड्डा आखिए आपे जाने आप सालाही सालाही एती सुरत न पाईया नदियां अतै वाह पवह समुंद न जानिए है समुंद सा सुल्तान गिरहा सेती माल धन कीड़ी तुल न होवनी जे तिस मनोह न विसरह है अंत न सिफती कहन न अंत अंत न करण देण न अंत अंत न वेखण सुनण न अंत अंत न जापे क्या मनमंत्र

अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एक कुवेश। भुगत ज्ञान दया भंडारण घट घट व जहनाद आप नाथ नाथी सब जाकी। रिद सिद्ध अवरा साध संजोग विजोग दुई कार चलावे है।

अजन्म है, अवर्ण है, अपूत है, अपर्ण है, अपांज है, अगांज है, अपांज है, अचूज है, अचांज है, अमीक है, रफीक है, अतांद है, अबांध है।

अजाम्ब है, अगम है, अजाम है, अभूत है, अशूत है, अलोक है, अशोक है, अकर्म है, अपर्म है, अजीत है, अपीत है, अबाह है, अगाह है, अमान है, निदान है, अनेक है, फिर एक है, भुजंग प्रयात छंद, नमो सर्वमान्ये समस्ते निदाने, नमो देव देवे अपेखी अपेवे, नमो काल काले, नमो सर्वपाले, नमो सर्व गौणे, नमो सर्व पौणे, अनंगी अनाथे, इंद्र संगी परमाथे, नमो भान भाने, नमो मान माने, नमो चंद्र चंद्रे, नमो भान भाने, नमो गीत गीते, नमो तान ताने, नमो नृत्य नृत्य, नमो नाद नादे, नमो पान पाने, नमो बाद बादे, अनंगी अनामे, समस्ति स्वरूपे, परपंगी परमाथे, समस्ति विभूते, कलंकंग बिना नेक लंकी स्वरूपे, नमो राजा राजेश्वरंग परम रूपे, नमो जोग जोगेश्वरंग परम सिद्धे, नमो राजा राजेश्वरंग परम बिरदे, नमो शस्त्र प्राणे, नमो अस्त्र माणे, नमो परम ज्ञाता, नमो लोकमाता, भेखीय परमीय भोगीय भुगते, नमो जोग जोगेश्वरंग परम जुगते, नमो नित नारायणे क्रूर कर्मे, नमो प्रेत अप्रेत देवे सुतर्मे, नमो रोग हरता, नमो राग रूपे, नमो साह साह, नमो पूप पूपे, नमो दान दाने, नमो मान माने, नमो रोग रोगे, नमो स्नंग स्नानंग, नमो मंत्र मंत्रंग, नमो जंत्र जंत्रंग, नमो इष्टे इष्टे, नमो तंत्र तंत्रंग, सदा सचदानंद सर्वंग प्रणासी अनूपे अरूपे समस्त निवासी सदा सिद्धदा बुद्धदा वृतकर्ता अदो उर्द अर्दंग अगंग उगहर्ता परम परम परमेश्वरंग प्रोषपालंग सदा सर्वदा सिद्धदाता दयालंग अशेदीय भेदीय नामंग अकामंग समस्तो पराजी समस्त स्थामंग तेरा जोर चाचरी छंद जले हैं थले हैं अपीत हैं अपेय हैं प्रभु हैं अजु हैं अदेश हैं अपेश हैं भुजंग प्रयात छंद अगाधे अबाधे आनंदी स्वरूपे नमो सर्वमान्ये समस्ते निदाने नमस्तुं नरनाथे नमस्तुं परमाथे नमस्तुं अगंजे नमस्तुं अपंजे नमस्तुं अकाले नमस्तुं अपाले नमो सर्वदेशे नमो सर्वपेशे नमो राजराजे नमो साज साजे नमो साह साहे नमो माह माहे नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोख रोखे नमो शोक सोखे नमो सर्वरोगे नमो सर्वभोगे नमो सर्वजीतंग नमो सर्वपीतंग नमो सर्वज्ञानंग नमो परमतानंग नमो सर्वमंत्रंग नमो सर्वजंत्रंग नमो सर्वदृशंग नमो सर्वकृसंग नमो सर्वरंगे त्रिपंगी अनंगे नमो जीव जीवंग नमो बीज बीजे अखिजे अपिजे समस्तंग प्रसिजे कृपालंग स्वरूपे कुकर्मंग प्रणासी सदा सर्वदा रिद सिदंग नवासी चरपट छांद त्वय प्रसाद अमृत कर्मे अमृत तरमे अखल जोगे अचल भोगे अचल राजे अटल साजे अखल तरमंग अलख कर्मंग सर्वंग दाता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग पाने सर्वंग माने सर्वंग प्राणंग सर्वंग तराणंग सर्वंग भुगता सर्वंग जुगता सर्वंग देवंग सर्वंग पेवंग सर्वंग काले सर्वंग पाले रू आल छंद त्व प्रसाद आद रूप अनाद मूर्त अजोन पुरख अपार सर्व मान त्रमान देव अपेव आद उदार सर्व पालक सर्व कालक सर्व गोपन काल जत्र तत्र विराज ही अवतूत रूप रिसाल नाम ठाम न जात जाकर रूप रंग न रेख आद पुरख उदार मूर्त अजोन आद असेख देश और न पेश जाकर रूप रेख न राग जत्र तत्र दिशा विशा हुए फैल्यो अनुराग नाम काम विहीन पेखत ताम हो न जाहे सर्वमान सर्वत्र मान सदैव मानत ताहे एक मूर्त अनेक दर्शन कीन रूप अनेक खेल खेल अखेल खेलन अंत को फिर एक देव पेव न जान ही जे वेद और कतेब रूप रंग न जात पात सो जान ही कह जेब तात मात

देवनाद मूर्त थाप्यो समय जिह थाप। परम रूप पुनीत मूर्त पूर्ण पुरख अपार, सर्व विश्व रचियो स्वम भव गण भंजन हार। कालहीन कला संयुक्त अकाल पुरख आदेश, धर्म धाम सुपरम रहत अभूत अलख अपेस। अंग राग नरंग जा कह जात पात न नाम, गर्भ गंजन दुष्ट भंजन मुक्त दायक काम। आप रूप अमीक अन उस्तत एक पुरख अवतूत, गर्भ गंजन सर्व भंजन आदि रूप असूत। अंगहीन अपंग अनात्मिक पुरख अपार, सर्व लायक सर्व कायक सर्व को प्रत पार। सर्व गंता सर्व हंता सर्व ते अनपेख, सर्व शास्त्र न जान ही जिह रूप रंग अरेख। परम वेद प्राण जा कह नेत भागत नित, कोट सिमरत प्राण शास्त्र न आवहि वह चित। मधुपार छंद त्वे प्रसाद,

काल अनपूत अंग अभाप अंग गतमित अपार गुण गण उदार मुन गण प्रणाम निर्भैन काम अत दुत प्रचंड मित गत अखंड अलिस्य कर्म अदृश्य धर्म सर्वा प्रणाट्य अन डंड बढ़ चादरी छंद त्व प्रसाद गोविंदे मुकंदे उदारे अपारे हरियंग करियंग निरनामे अकामे पियंग प्रयात छंद चत्र चक्र करता चत्र चक्र हरता चत्र चक्र दान जान दाने चक्र चक्र जाने चत्र चक्र वर्ती चत्र चक्र परती चत्र चक्र पाले चत्र चक्र काले चत्र चक्र पासे चत्र चक्र वासे चत्र चक्र माने चत्र चक्र दाने चाजरी शांत न सत्र न मित्र न परमंग न पित्र न कर्मंग न काय अजन्मंग अजाय न चित्र न मित्र परे है पवित्र प्रतीस अधीस अदृश अकृश भगवती शांत त्व प्रसाद कि आशिज दिस है कि आ भिज पिस है कि आ गंज करम है कि आ भंज भरम है कि आ भिज लोक है कि आ दित सुख है कि अवधूत वर्ण है कि विभूत करण है कि राजंग धर्म के राजंग प्रभा है कि धर्मंग तुझा है कि आ शोक वर्ण है कि सर्वा अपर्ण है कि जगदंग कृति है कि शतरंग क्षत्रिय है कि ब्रह्मंग स्वरूप है कि अनुभव अनूप है कि आद देव है कि आप भेव है कि चित्रंग विहीन है कि अधीन है कि रोजी रिजा कह रही मैं रिहा कह

अदेख है, अलेख है, अपेख है, अटाह है, अगाह है, असंभ है, अगम्भ है, अनिल है, अनाद है, अनित है, सुनित है, अजात है, अजाद है, चरपट छंद त्व प्रसाद, सर्वं हंता, सर्वं गंता, सर्वं ख्याता, सर्वं ज्ञाता, सर्वं हर्ता, सर्वं कर्ता, सर्वं प्राणं, सर्वं तराणं, सर्वं कर्मं, सर्वं तर्मं, सर्वं युक्ता, सर्वं मुक्ता, सावर छंद त्व प्रसाद। नमो नरकनाशे सदा मंग प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अभंगं विभूते परमात्मं परमाथे सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूपे निर्बाध विभूते अनंगी नामे त्रिपंगी त्रिकामे त्रिपंगी स्वरूपे सर्वभंगी अनूपे न पोत्र न पुत्र न सत्र न मित्र न तात न मात न जात न पात नृसाकं सरीक है अमितो अमीक है सदा मंग प्रभा है अजय है अजा है भगवती शांत त्व प्रसाद। के जाहर जूहूर है कि हाजर हजूर है हमेशुल सलाम है समस्तुल कलाम है कि साहिब दिमाग है कि हुसन चिराग है कि कामल करीम है कि राज करीम है कि रोजी देहांद है कि राज ग्रहिंद है करीमल कमाल है कि जुरत जमाल है करीमल कमाल है कि हुसन जमाल है गनीमल खिराज है गरीबुल निवाज है हरीफुल सिकान है हिरासुल फिकान है कलंक प्रणास है समस्तुल निवास है अगंजुल गनीम है रजायक रहीम है समस्तुल जबा है के साहिब करा है के नरकंग प्रणास है बेहस्तुल निवास है के सर्वुल गवान है हमेशुल रवान है तमामुल तमीज है समस्तुल अजीज है परम परम ईस है समस्तुल अदीस है अदीसुल अलेख है हमेशुल अपेख है।

लेखे अकर्मंग परमंग अगंजे लेखे पियंग प्रयात शांत नमस्तल प्रणाम में समस्तल प्रणासे अगंजल नाम में समस्तल निवासे नरकामंग विभूते समस्तल स्वरूपे कुकर्मंग प्रणासी सुतरमंग विभूते सदा सचदानंद सतरंग प्रणासी करीमल कुनिंदा समस्तल निवासी अजायब विभूते जायब गनी में हरियंग करियंग करीमल रही में चत्र चक्रवर्ती चत्र चक्र पुगते स्वयं पव सुबह।

हमारे पच्छा श्री असत हो जजु करी हो रक्षा। राख ले हो मोह रख नहारे साहेब संत सहाय प्यारे दीन बंद दुष्टन के हंता तुम्हो पुरी चतुर्दशकंता। काल पाए ब्रह्मा बबतरा काल पाए शिव जू अवतरा काल पाए कर विष्ण प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा। जमन काल जोगी शिव कियो वेद राज ब्रह्मा जू थियो जमन काल सब लोग सुवारा नमस्कार है ताहे हमारा। जमन काल सब जगत बनायो देव दैंत जशन उपजायो आदि अंत एक अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा। नमस्कार तसी को हमारी सकल प्रजाज ने आप सवारी सेवकन को सब गुण सुख दियो सतरन को पल मोह बद कियो। घट घट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत चीटी ते कुंचरे अस्थूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछान घट घट के पट पट की जान। जब युद्ध कर्क करा कर तारा प्रजा तरत तब देह अपारा जब या कर्क करत हों कब हो तुम मैं मिलत देह तर सब हो। जेते बदन श्रेष्ठ सब तार है आप अपनी बूझ उचार है तुम सभी ते रहत निरालम जानत भेद भेद अरे आलम। निरंकार निर्विकार निर्लंब आद अनिल अनाद सांब ताका मूड उचारत भेदा जाको भेव न पावत भेदा। ताका कृपाहन अनुमानत महा मूड कश भेद न जानत महादेव कौ कहत सदा शिव निरंकार का चीनत नह भेव। आप अपनी बुद है जेती वर्णत भिन्न भिन्न तोय देती तुमरा लखा न जाय पसारा केह विद सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप स्वरूपा रंग भयो राव कहे भूपा अंडज जेरज सेत जकीने उत्पुज खान बहुर रच दीने। कहूं फूल राजा हवे बैठा कहूं सिमट भयो संकरे कैठा सिगरी श्रेष्ठ दिखाए अचम भाव आद जुगाद स्वरूप स्वयं भाव। अब रक्षा मेरी तुम करो सिख बार सिख संगरो दुष्ट जिते उठवते उत्पाता सकल मलेश करो रणकाता। जे अस तुझ तब सरणी परे तिनके दुष्ट दुखत हवा मरे पुरख जमन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सपटारे। जो कल को एक बार ते आए हैं ताके काल निकट नह आए हैं रक्षा होए ताए सब काला दुष्ट अरिष्ट टरें तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाह निहर हो ताके ताप तनक मह हर हो रिद सिद्ध कर्मो सब होई दुष्ट शाह शव सकै न कोई।

सदा कुर्बानी। बोलो जी, बोलो जी। एक ओंकार श्री वाहेगुरु जी की फतेह। श्री भगवत जी सहाय, वार श्री भगवत जी की पातशाही दसवीं, प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक ले त्याय, फिर अंगद गुरु ते अमरदास रामदास हुई सहाय। हर जन हर गोविंद नो सिमरो श्री हर राय, श्री हर कृष्ण त्याय, जे डठे सब दुख जाए, तेग बहादुर सिमरै घर नौ निदावै ताए, सब थाई होए साए। दसवीं पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, सब थाई होए साए। दसां पातशाहियां दी जोत, हाजरा हजूर गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ, दर्शन दीदार जी का ध्यान करके खालसा जी। बोलो जी। पंजां प्यारियां चूहा साहिबजादियां, चालियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां, जिन्हां नाम जपया वंड छकिया, देग चलाई देग वाही, देग के अंडिट किया, तिना प्यारियां सच्यारे दी पवित्र कमाई का ध्यान करके खालसा जी। बोलो जी। जिन्ना सिंगा सिंगणिया ने धर्म हेत सीस दिते, बंद बंद कटाए, खोपरिया लुहाइया, चरखड़िया ते चढ़े, आरिया नाल तंच रवाए, गुरुद्वार की सेवा लई कुर्बानियां कीतियां, सिखी केसा सवासा संग निभाई, धर्म नहीं हारिया, तिना की कमाई का ध्यान करके खालसा जी। बोलो जी। पंजा तख्तां सरबत गुरुद्वारियां दी पवित्र कमाई दा ध्यान करके बोलो जी। प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है, सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, चितावे चितावन का सदका, सर्व सुख होए जहां जहां, खालसा जी साहिब तहां तहां, रक्षा रियायत देग देग फतेह, बिरद की पैज पंथ की जीत, श्री साहब जी साहे खालसा जी के बोल वाले। बोलना जी। सिखा नु सिखी दान, केस दान, रहत दान, विवेक दान, विसाव दान, भरोसा दान, नाम दान, दाना सिर दान, नाम दान, श्री अमृतसर जी के दर्शन स्नान, चौंकियां झंडे बुंगे, जुगो जुग अटल धर्म का जयकार, खालसा जी के बोल वाले। बोलना जी। सिखा दा मन नीवा मत उची, मत पत दा रखा आप अकाल पुरख वाहिगुरु, हे अकाल पुरख सतगुरु जी अपने पंथ दे सदा सहाई दा तार जीओ। श्री ननकाणा साहिब होर गुरुद्वारिया गुरुधामा जिन्हां तो पंथ नूं विछोड़िया गया, तिन्हां दे खुले दर्शन दीदार सेवा संभाल, प्यारे पंथ खालसा जी नूं बख्शिश करो, निमाणिया दे माण निताणिया दे ताण, नियोटिया दी ओट गुरु गरीब निवास सच्चे पातशाह जी। धन गुरु नानक साहब जी महाराज, धन गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज, धन धन धन गुरु ग्रंथ साहब जी, शब्द गुरु दाता जी, आप जी दे मुबारक दर ते अरदास बेनती है सच्चे पातशाह। आप जी दे पाणी अंदर चार पहर रहण बतीत हुई है सतगुरु जी, अमृत वेले आप जी दे दर्शन दीदार नाल दिन दी शुरुआत हुई है सच्चे पातशाह जी। आप जिया ने सचखंड तो चल के तख्तां ते मेन हाल विच प्रकाशमान होके दर्शन बख्शिश कीते ने महाराज जी, उपरंत सुखमनी साहब जी का पाठ पवित्र हुक्म बख्शिश कीता, सुखमनी साहब जी का पाठ होया, पंजां बाणियां का नितनेम होया सच्चे पातशाह। आप जी की हजूरी विच विचरदिआं, आप जी की गोद विच बैठिआं बेअंत फुल्लां हो जांदीआं ने, बख्श लैणा सच्चे पातशाह जी। कड़ा प्रसादी देग हाजर है गुरु गरीब निवाज, आप जी दर प्रवान करो, भोग लग्या प्रसाद जो भी छके, सतना श्री वाहिगुरु वाहिगुरु जपे। बेअंत संगतां ने अमृत वेले तो आप जी दे चरना कमलां दीआं हाजरियां भरिया ने, आप जी दे दर्शन दीदार कीते ने हाजरियां प्रवान, तिल फुल भेटा प्रवान महाराज जी, दासरिया ने दासरिया के परिवारां ने हाजरियां भरिया, दाता जी आप जी जानी जान हो, बिन बोलिया सब किस जानदा, किस आगे की चे अरदास, नानक घट घट एको वर्त दा शब्द करे प्रगास। महाराज जी सारे कारज दास करने, भजन बंदगी दा प्रताप बनाउणा महाराज जी, पंथ दी सदा चढ़दी कला, जय जयकारा चोलते निशान रहे, पंथ महाराज के लागते दीवान रहे, गुरु महाराज के महाराज जी पंथ नू सदा एकता चढ़दी कला बख्शिश करे महाराज जी, अपने दर दे सेवकां नू दासरे नू सदा
ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਨ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਸਦਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਬਰਕਤਾਂ, ਰਹਿਮਤਾਂ, ਰਸਤਾਂ, ਵਸਤਾਂ, ਦਰਗਾਹੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤੀਆਂ ਨੇ, ਆਪ ਜੀ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਹੋ, ਘੱਟ ਘੱਟ ਕੇ ਅੰਤਰ ਕੀ ਜਾਣਤ, ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਣਤ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਭਾਗ ਲਗਾਇਓ ਝੋਲੀਆਂ ਪਰ ਦੇਣਾ ਦਾਤਾ ਜੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਆਸਾ ਦੀਵਾਰ ਜੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਲਈ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਸਦਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜੇ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਭੇਜਿਓ ਜੀ। ਸੁਖ ਹੋਵੇ, ਨਾਮ ਚਿਤਾਵੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾ ਗਿਆ ਪਹੀ ਅਕਾਲ ਕੀ, ਤਬੈ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ, ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇਹ, ਮਿਲਬੋ ਚਹੈ ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਆਕੀ ਰਹੇ ਨਾ ਖਾਰ ਹੋਏ, ਸਭ ਮਿਲੇਂਗੇ ਬਚੇ, ਖੰਡਾ ਜਾ ਕੇ ਹਾਥ ਮੈਂ, ਕਲਗੀ ਸੋ ਹੈ, ਸੋ ਹਮਰੀ ਰਛਿਆ ਕਰੇ ਗੁਰ ਕਲਗੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ ਚੜੇ ਸੋ, ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਸੇਵਦੇ, ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਸੇਵਦੇ ਗੁਰ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ।

0: सच्ची तेरी कुदरत सच्चे पातशाह नानक सच ध्यान सच जो अमृत मैं सो कच निकच महला पहला
1: वड्डी वड्याई जा वड्डा ना वड्डी वड्याई जा सच न्याओ

पड़पुस्तक संध्या पातंग शिल्प जस बुगुल समातंग खुब जुड़ वे मुखड़ सारंग त्रैपाल त्याल विचारंग गल माला

सच संयम सोई गुरमुख ज्ञान नाम मुकत होई। गुरमुख कार सच कमावह सच्चे सच समावणिया।

अमृत पीवै जिसनो आप पियाए, गुर प्रसादी सहज लिवलाए, पूरन पूर रहया सब आपे, गुरमत नदरी आवणया आपे आप निरंजन सोई, जिन सिर जी

सहजे सच समावणिया। माया मह फिर चेतन लाए, गुर कै शब्द सद रह समाए। सच सलाहे

दर सच्चै सोभा पावणिया। निर्मल ते सब निर्मल होवै, निर्मल मनुआ हर शब्द परोवै। निर्मल नाम लगे बड़ भागी, निर्मल नाम सुहावणिया। सो निर्मल जो शब्दे सो

ऊंचा कूके तनह पछाड़े माया मोहे जो है आजम काले। माया मोह इस मन है नचाए अंतर कपट दुख पावणिया गुरमुख।

शरीरों पालण को बाहर जाए, नाम ना लहै बहुत बेगार दुख पाए, मन मुख अंदर

नौ दर ठाके धावत रहाए, दसवें निज घर वासा पाए। उथे अनहद शब्द वजै दिन राती, गुरमति शब्द सुनावणिया। बिन शब्द अंतर आनेरा, ना वस्तल है ना चूकै फेरा। सतगुर हथ कूंजी होरत दर खुलै नाही, गुरपूरै भाग मिलावणिया। गुपत प्रगट तू सबनी थाई, गुर प्रसादी मिल सोजी पाई। नानक नाम सलाहे सदा तू, गुरमुख मन वसावणिया। माज महला तीजा, गुरमुख मिलै मिलाए आपे। काल ना जो है दुख ना संतापे, हमें मार बंधन सब तोड़ै। गुरमुख शब्द